भगत जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जांदे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जांदे ने, घर परिवारां दे भी कलेश मुक जांदे ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दिखी मां, गुरु बख्शिश करे रहमत करे पाडे साडे ते सबना ते, चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी वो आप जी दे सन्मुख होणगे, गुरमत विचारा द्वारा तुहानू निहाल करनगे, साडियां भुल्लां बख्श लैणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

0: हे गुरु
1: साहिब जी सब किश आपे आप है दूजा अवरना कोई ज्यों बुलाए त्यों बोली है जा आप बुलाए सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए हर की वडियाई ओ आख ना साका ओ मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक को बख्श लै मेरे स्वामी

अंतलय छड़ाया इको अंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई, लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहे आ। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहया। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब समाले। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे।

रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना, ज्यो तिसदी वडिआई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला।

तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारण हारा, आसा महला पहला।

मन भाओ करिया ऊडे ऊडा वैसै कुसा तिस पाछे बचरी चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर कल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह सब

सेवहि तुर जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावहि हर त्यावहि तुर जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी।

भगत तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता।

चत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारी पच्छा, श्री आस तुझु करे हो रक्षा, राख ले हो मुहिराखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायु, देव दैत जच्छन उपजायु, आदंतिक कै अवतारा, सुई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मु बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुख।

महामूढ़ कछु भेद न जानतु, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज देर जिसे तज कीनी, उत भुज कान बाहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरी कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रचा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन खाता, जे आस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख

ताके काल निकट नह है रुच्छा हुई ताहि सब काला। दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहर हो ताके ताप तनक में हरि हो रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई। दुष्ट छाह

सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जानियो, श्री सुपान कृपा तुमरी कर। मैं न कहूँ सब तो हे बखानियो, दोहरा सगल

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा। थाल

तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म सार।

मेहरामत हुई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थी वह हरिया।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मन बाहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम

0: सेवा प्रवान हुई है पुला चुका दिखे मापते प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो ठाकुर
1: तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने, तुमरा उचे ते सगल समग्री तुमरे सूतर तुमते हो ऐसो आज्ञा। तुमरी गत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरां। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे शब्द बजाए। तेग बहादुर सिमरै करनाउ दया वे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी। सब थाई हुए सहाय दसम पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखे। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाहे देख के अंडिठ किया तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान रखे। खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए कोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे ने चढ़ाए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारे सिक्खी के सस्वसत संघ निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान रखे। खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान रखे। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जां जां। खालसा जी साहिब तार शरियायत देखते फतेह ब्रद की पाए पंथ की जी। श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बल। बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन शनान चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत करा खाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाई दातार जी। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान। प्यारे खालसा जी नूं बख्शे ने माण्यो के मान ताण्यो के तान ऊटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी के चरणा च अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश हुई। पावन हजूरी अंदर आत्री दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दचारा उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन आए। महाराज जी समुची सेवा नभाद्या बाणी पढ़द कीर्तन करद्या विचारा करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होइया बेंत फुलां बख्श देनिया जी। अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उत्तम बख्शिश करना जी। बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदयां तों वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी तिल फुल पिटा मंदर प्रवान करनिया सभना नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी। महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी। महाराज जी बिन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रही हन जाप सरवण करदिया आप जी का धन्यवाद करदे हां। बेंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा संघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती। महाराज जी सारी संगत दी हारी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाए हुए बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया जी। आप दर घर दे सेवक बच्ची गुरबाणी कौर के जन्मदिन की खुशी विच परिवार वल्लों धन्यवाद करदे अरदास बेनती करदे ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੁਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਦਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾਮ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਣ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: ऊठ सिधायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए। नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइए। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए। नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहेला रा गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय कर कीरता की है करते का होए विचारो तुत कर गावो। सोहेला सिवरो सृजनहार तुम गावो मेरे निरपहु का सोहेला। हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहा। नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवन हार। तेरे दाने की मतना पवे तिस दाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सजन सीसड़िया जो होए सब सुमेल। कर कर एहो पहुंचा सदले नित पवन। सदन हारा सिमरे नानक से देह अमन। राग असा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश। गुरु गुरे को वे सनेक बाबा, जय कर करते कीरत होए सो खर राख बढ़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां फैरा थी तिवारी महा होवा। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वे इस राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तू उपमल आन लो पवन चबरो करे सगल बन राय। बुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत तेरी रहाओ। सहस तब नैन नना नैन है तो है को सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में है जोत जोत है सोए तिस कै चानन सब में चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया। मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर गंडाओत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर रसाद न जाने तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चले चुपे दुख पावे जमकाल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पाव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। आउद कटे दिनस रहन आरे मन गुर मिल का सवारे रहाओ। एह संसार विकार संसे में तरेओ ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पिया वे एह रस अकत कता तिन जानी। जा को आए सोए बिहा जो हर गुर के मन है बसेरा। निज घर महल पाओ सुख सहजे बोर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की पूरे। अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। उद्यागे अरदास हमारी जियो पिंड। वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जा। मेरा वाहिगुरु बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुणानक आय फिरंगत गुरती अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हरगोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण की आई है जी जिथे सब दुख जाए तेज बहादुर सिमरिया घर नो निदावै ताए सब थाए साह दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाए सहाय दसां पातशाह की आत्मिक जोत जागती जो चौरत खदे मालिक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलना जी वाहे निमाणिया के माणी ताणिया के ताणी ओटिया की ओर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जागती जोत आप जी के चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जी आप जी ने पार बख्शिश कृपा की अमृत वेले तो लैके ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਹਿਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸੰਖੇ ਕੇ ਮਾਕਣ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਗਾਸਨਾ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਇਸਨਾਨ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ। ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰਾਓ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰਾਓ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੋਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਊਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਾਸ਼ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਾਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰ ਹੀ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰਉ ਪੁਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਾਧ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀ ਚੌਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋ ਤਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਕਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿੱਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ। ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੂਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ।
छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पर राही। अनक बिगन जय आय संघारय, हर का नाम तत्काल उधारय। अनिक जोन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साधकै संग। जेह मार्ग के गने जाय न कूसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जह पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु। जह महापयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जह त्रिखा मान तुज अकरख, तह नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन बिसराम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट। हर जासु करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुकत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन सोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर आठ पहर जन हर हर जपै। हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुकत बहु करे। नानक जन सांग केते तरे, पार जात एहु हर को नाम काम। तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत हृदय वसाय। संत प्रताप दुरत सब नसाय, संत का संग वड भागी पाई है। संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश अवर ना होए। नानक गुरमुख नाम पावै जान कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरि, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सकल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमाए कर राति, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरु मुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरे, चेर जीवे महा उदास पीसर थीवे। अगन माहे होमत प्राण, कनक अशव है वर भूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, पाओ पी होमै मैल न जावे। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरु मुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै। जल धोवै बहु दे अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच। बहुत स्याणप जम का भौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन न त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजहै। छूटस नाही ऊप पयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपू ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी सोभा लोरै, साध संग ए होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणे परै। जिस जान कौ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मै पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊचा। जा का मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सृष्ट साजना।
सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरथन कौ धन तेरो नाउ न थावे कौ नाउ तेरा थाउ निमाने को प्रब तेरो मान सगल कटा कौ देव दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत मित जन हो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोय सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिहे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुनी आर अनया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत राखो नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने कवन मूल ते कवन दृष्टाने जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मैं जिने उबारिया बार बविस्ता तुझे प्यारे दूध भर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख्य प्याओ बैठ कौ दैन एहु निर्गुण गुण कछु न बूजै बख्श लिहो तहो नानक सीजै जिहे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सोत भ्रात मीत बंता संग हसै जिहे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिहे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ लेहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निद पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगै मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तहब प्रीत पसम संग होए अंध कूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक प्रचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुआन अंतर अगन बाहर तन सुआ गल पाथर कैसे तरै अथा जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंदा कैसे मार्ग पावै कर कै लिहो ओढ़ निबहावै कहा बुझारत बूझै डोरा निष्कहिय तौ समझै भोरा कहा बेसन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै न चीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोए न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी सलोक देन हार प्रभ छोड़कै लागै अन सुवाए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक पीना दे दस पी हैर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिउ नाहि चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जान अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै आनंद उलास
अपनी अमान काश बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुरुष का विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिस आगे रखे प्रभ की आज्ञा मन है माथा है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेक बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन सयो मन पछतावे जो दिसै सो चलन हार लपट रहे उतह अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ न आवे केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मुहु अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साधकी सरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहिरै मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरण दिन रहन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपन के नरारथ दाम धन धन ते जन जिहे घट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर उपदेसै आप ना करै आवत जावत जन मैं मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपह मानै आपहे आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यान पसगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी नेमख नेमख जप नानक हरी सलोक काम

ताहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं सुका बिसराम। सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिसमाद। तिन देखिया जिस आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल। बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म। पौन पणी बैसंत्र माहे चार कुंट दह दिसे समाहे। तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख ससी अर सूर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल ना कब हूं डोले। सर्ब कला कर खिले खेल मोल ना पाये गुणे अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाती ज्योत धार रहे स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नास नानक तिन मैं एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने करन करावनहार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे बिस्थार तिस भावे ता एक अंकार। अनेक कला लखी नह जाहे जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मध अलिप तोरा है जो किश कहना सो आपे का है। आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता लय समाए। इस ते होए सुना ही बुरा पूरा कहो कि न काश करा। आप भला करतूत आत नीकी आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संग राच। पाकी गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए। तिसका किया सब परवान गुरप्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मांगो। आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार। उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन। सोनत कमावत हो तो उधार आप तर जो कै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महा।

प्यार अमृत वेला सच ना वड़ियाई विचार करमे आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखिए पाहु दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रिया सुमाई गोरी सर गुर गुर खबरमा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सुभावा विण पाने के नाय करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर जसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई चंगा ना उर खाई कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई तवात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने कोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगा सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर वर्मा इंद सुने मुख साला हनुमंद सुने जोग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगा सुने दुख पाप का ना सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पाव मान सुने लग सहज ध्यान नानक भगता सदा विगा सुने दुख पाप का ना सुने सरा गुणा की गाह सुने शेख पीर पातशाह सुने अंधे पावह राह सुने हाथ वै सुगाहु नानक भगता सदा विगाह सुने दुख पाप का नाश मन्नी की गत कही न जाए जी को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का वह करण विचार ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुँह चोटा न खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पाछो प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंधु ऐसा नाम निरंजन होए जिको मन जाने मन कोए मन्ने पावह मुख द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तरै तारे गुरसिख मन्ने नानक भवह न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुरेक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे हुए सचियार तवले ऊपर किता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुरी कलाम एह लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता हुए किता तान स्वालिहो रूप किती तात जाने कौन कूत किता पसाओ इको को आओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचारु वारिया न जावा एक वारु तू तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
असंख जप संख भाऊ संख पूजा संख तप ताऊ संख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोहक सार असंख मोह लिवलाय तार कुदरत कवन कह विचार वारिया न जावे एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर कंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाए असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिने लिखे तिस सिर नाहे जे फरमाए तिव ते पाहे जीता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन देहे पानी धोते उतर सखेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए उतोए भरिए मत पापा कै संग हो तो पै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाहु आपे बीज आपे ही काहु नानक हुक्मी आव जाहु तीरथ तप दया दत्त दानु जिकु पावै तिलका मानु सुनया मनया मन कीता पाहु अंतरगा तीर्थ मल नाहु सब गुण तेरे मैं नाही होए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सुदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माओ कवन जित हुआ आकार वेल न पाईया पंडती जे हुए लिख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखण लेख कुरान हितवार ना जोगी जाने रुतमा हु ना कोई जा करता सिर ठीको साजी आपे जाने सोई क्यों कर आखा क्यों सलाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जी को आपो जाने अगे गया न सू है पाताल पाताल लख आगास आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहनक वात सह सठारह कहनक त्रिबास लोहिक धात लिखा हुए त लिखिए लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदिया तैवा पवह समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरह अंत न सिफती कह नंत अंत न करण दे नंत अंत न विखण सुन नंत अंत न जापै क्या मन मंत्र

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਉਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਨੀ ਜੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਚੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰੰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸ਼ਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ, ਨਮਸਤਸ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤਵੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਵਾਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਚੰਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਭੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਦੇ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਰਣ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਪਰਣ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਭੰਜ ਹੈ, ਅਝੂਜ ਹੈ, ਅਝਾਂਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਧ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਅਬਾ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰੇਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ। ਨਮੋ ਸਰਮਾਨੀ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੀ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾਨੇ, ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ,
नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वर परम युगते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवेशु धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंगि सनानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं करनासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धा भृतकर्ता अदु उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अछेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्ये कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी चरपड़ छंत्व प्रसाद अमृत कर्मी अमृत धर्मी अखल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग पुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूपन आद मूरत अजोन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम थावना जात जाकर रूप रंग नारेक आद पुरख उदार मूरत जौन आदस एक देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जह जाप आद देवन आद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर विश्व रच्यो सोयम भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत भूत लख पे संग रग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमित अनुष्ट देख पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग नाथ मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाकह नित पाकत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नया वही वह चित मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नांगन भव प्रकाश निश्चिन अनासा जन बाहु साहन साहु राजन राज भानन भान देवन देव महान इंद्र निंद्र बालन बाल रंकान रंकालन काल
अनुभूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम मद्वत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्मादृश्य तरम सर्वा प्रणाढ़ बाटे चाचरी चंतव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रिया छंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हरता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र परती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र मान्य चतुर्चक्र दान्य चाचरी चांदन सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सदृश भगवती छंतव प्रसाद कथते किया चिज देश गया भिज भेष गया गंज करम गया पंज पर मैं गया भिज लुक किया दित सुख के अवतूत वरण के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है कि छत्रं क्षत्रिय के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदिदेव है के आप अपे है कि चित्रंग बही ने के कह दीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बे है वह कि गह भूल गह वह के फूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यान है कि राज रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परमं कलिमे कि अकल अलम है कि साहिब कलम है कि हुसन वजू है तो मामुल रजू है हमीसल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रिजायक यकीन है अनिकल तरंग है अपीत है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेति अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है निर्बाध है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूपे अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गंग त्रिभाध्य अगंजी अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुग स्वरूप है अचिज है अचूत है किन्नर कंग प्रणास है प्रतुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपांग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है कर्म है अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं भूत हैं अतूत हैं अनास हैं उदास हैं दंध हैं बंध हैं भक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनित हैं अलिख हैं दिख हैं अलिख हैं अपेख हैं अटा हैं अगा हैं असंभ हैं अगम हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट चंतव प्रसाद सर्वघंता सर्वघंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमात्थे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकुं सरी कै मितु अमी कै सदैव प्रभा है अजय अजय भगवती छंदव प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
ہم اس السلام ہیں سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے غنی الخراج ہے غریب النواز ہے حریف الفکن ہے ہراس الفکن ہے کلنک پرناس ہیں سمست النواس ہیں اگنج الغنی ہے رضائق رحیم ہے سمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے کہ نرکنگ پرناس ہے بحث النواس ہے کہ سرب الگوان ہے ہمیش الروان ہے تمام التمیز ہیں سمست العزیز ہیں پرم پرمیش ہیں سمست العدیش ہیں آدیش العلیک ہیں ہمیش الابیک ہیں جمین الزما ہے امیک الما ہے کریم الکمال ہے کہ ضرورت جمال ہے کہ اچلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو بے بھوت ہے کہ متو پسا ہے کہ آتم پربھا ہے کہ اچلنگ انانگ ہے کہ متو اپنگ ہے مد پار چھند تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر گنجو ہر نر پر پانجو انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ برنر امنڈ ون پوناس من من پرکاش گنگن پرنام جلتھل مدام انچج انگ آسن پنگ اپما پار گت مت ادار جلتھل امنڈ دش اپنڈ جلتھل مہنت دس وس بے انت ان پوناس تریتر تراس آجان باہو اک سداہو اومکاراد کتنی اناد کھل کھنڈ خیال گربر اکال کر کر پرنام چت چرن نام انچج گات اجج نہ بات انچنج گات ان رنج بات ان ٹٹ پنڈار ان ڈٹ اپار آڈیٹ کرم ات ٹیٹ کرمن برننت داتا مہنت ہر بول منا چنتو پرساد کرنالیہ ہیں ارکالیہ ہیں کلکھنڈن ہے مہمنڈن ہے جگتیشور ہیں پرمیشور ہیں کلکارن ہے سربوبارن ہے ترت کے ترن ہے جگ کے کرنے من مانیہ ہیں جگ جانیہ ہیں سربنگ پر ہیں سربنگ کر ہیں سرپاسے ہیں سربناسے ہیں کرونا کر ہیں بسم پر ہیں سرویشور ہیں جگتیشور ہیں برہمنڈ سے کلکھنڈ سے پرتی پر ہیں کرونا کر ہیں جپا جپ ہیں تھپا تھپ ہیں اکرتا کرت امرتا امرت امرتا امرت کرونا کرت اکرتا کرت ترنی ترت متیشور ہیں پرمیشور ہیں اکرتا کرت امرتا امرت جبا کرت امرتا امرت نرنائک ہیں کلکائک ہیں وسم پر ہیں کرنالیا ہیں نربنائک ہیں سرپائک ہیں پاپنجن ہیں رگنجن ہیں رپتاپن ہیں جپ جاپن ہیں اکلنگ کرت سربا کرت کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے پرماتم ہے سرباتم ہے آتم بس ہے جس کی جس ہے پجنگ پریا چند نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راسنگ تامسنگ سانت روپے نمو پرم تتنگ تتنگ سروپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے نمو منتر منترے نمو تیان تیانے نمو جد جدے نمو گیان گیانے نمو پوج پوجے نمو پان پانے نمو کلہ کرتا نمو سانت روپے نمو اندر اندر انادم وپوتے کلنکار روپے النکار النکے نمو واساسے نمو بانک بنکے اپنگی سروپے اننگی انامے ترپنگی ترکالے اننگی اکامے کچری چند اجے الے اپے ابے اپو اجو اناس اکاس اگانج اپانج الک وپک وکال دیال ولیک اپیک انام وکام وگاہ اٹاہ اناتھ پرماتھے اجو نیمونی نراگی نرنگی نروپی نریکی کرمنگ پرمنگ گنجی الیکی پجنگ پریا چند نمستل پرنامی سمستل پرناسی اگنجل انامی سمستل نواسی نرکامنگ بپوتے سمستل سروپے کرمنگ پرناسی سدھرمنگ بپوتے سدا سچ دان سترنگ پرناسی کریم الکو نندا سمستل نواسی اجائے بپوتے گجائے گنی میں ہریئن کریئن کریم الرحیم چتر چکر ورتی چتر چکر بھگتے سویم پو سبم سروگا سرو جگتے دوکالم پرناسی دیالم سروپے سدا انگ سنگے اپنگنگ بےبوتے دوکالم پرناسی دیالم سروپے سدا انگ سنگے اپنگنگ بےبوتے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح ایک اونکار ست گر پرساد
पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदातिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारी कोट तुरंग कुरंग से कूद तो पौन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के पूप पली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भये तो कहा भय पूपत अंत को नांगे पाए पदारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत भविक पुवान के पूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है पौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परि मन में कर पर्वत पंख हलीन हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाँ निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सुवेक दवैया दानव देव फनिंद निशाचर पूत भवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन पर थापन बाढ़ जय तुन पापन के भव पुंज कपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निराद पुजौंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म ही सर्विष्ण सचिपत अंत पसी जम्फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर न दे तरेंगे का भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाथ फिरो लिए सास समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखियान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूँ सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पावन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीश निवायो को वतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को वतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दै मुहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आसंगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तूर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए
पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे हो रक्षा राख लिहो मोह राखन हारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांधुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुँह बद कियो कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपान अनुमानत मां मूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तीती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही फूपा अंडज जेरज से तजगिनी उत भुज कान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सिमट पय शंकर कैठा सिगरी शीर्ष दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखु वार सिख संगरु दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन का था जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट जाहे निहरे हो ताकि ताप तनक मैं हरे हो रे दसिद कर्म सब हुई दुष्ट छाछव सकै न कोई एक बार दिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो का दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहु बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अस्तुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निखड़ना तिन्नर के रह हो जो एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सैस पुनि जय अर्ध सैस पुन तीन कही जय पादर सुदिष्टमी रवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सोईया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कह अमेक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल

क्या करे विचारिया तुदवा सुमरत कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नु हुरथाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सच्चा सुवारिया कह नानक यो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जन पावै पावै तां सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर है दादी सिख नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आओ संत प्यारे कथ की करह कहानी कथ केरी कित दुआरे पाईए तन मन धन सब सौप गुर को हुक्म मन्या पाईए हुक्म मन्यो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरे आ ए माया मोहनी जिनेत परम पुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगोली पाईया कुर्बान कीता तिसे विट्टा हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाली सा तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम उले ना कीचै जितंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरे नाली कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभालिए गम गुचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपनाप तू जानही जी जन सब खेल तेरा क्या कुआक वखाणे क्या कुआक वखाणे आखै ता वेखै सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा वह मैं तिरंत न पाया सुर नर मुन जन्म अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तू दुपाय कबीर प्रसन्न आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिख मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्ने हो तिखी वालो निकी ईत मार्ग जाना गुर प्रसाद जिन आप तजिया हर वासना सुमानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाहे त्यो चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलह जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वार सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला सबद सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन धुरों लिखिया एक फिरै तनेरे करह गल्ला गली किने न पाया कह नानक सब सोहेला सतगुरु सुनाया पवित हुए से जना जिनी हर त्याया पवित हुए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटाम सह स्यो पवित संग सुबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा कि तय संजम रहे कर्म कमाई सह सहज उमली नह के संजम धोता जाए मन तो शब्द लागू हर स्यो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इवजाए जी हो मैले बारहू निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर है ज्यो बेता लिया कह नानक जिन सत जिया कूड़े लागी तिनी जन्म जुए हारिया जी हो निर्मल बारहू निर्मल बारहू ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मन सत सत समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले से वन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याई अंतरात्मा संभाली आप छठ सदा रह पर न गुर बिना वर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन

पावे, जे को गुरते वे मुख होवे। बिन सतगुरु मुक्त न पावे, पावे मुक्त न हो तै कोई पुछब वे किया जाए। अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त न पाए, आओ सिख सतगुरु के प्यार होगा। वो सच्ची बाणी बाणी तंगा वो गुरु केरी बाणी असर बाणी। जिनको नजर कर्म होवे हृदय तिना सुमाणी, पीव हो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नान सुदा गावे सच्ची बाणी, सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कया कछु न जानी, चिर चिनका हिरले माया बोलन पैरवाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुरु का शब्द रतन है हीरे चित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ, सब छेती मन मिलिया सच्चै लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता फुपाए कह करता आपे, हुक्मरताए हुक्मरताए आवे कह। गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन हुए मुख शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो हुए, कस्यु लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाजो, तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार। ब्रह्म सुत्ता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर। मन वसिया बोले अमृत बाणी, कह नान सो तत पाए जिसनु वन दिन हर लिव लागे। जागत रहन विहानी, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनु क्यों विसारी है, विड़दाता जगन में आहार पहुंचावे। ओसनु क्यों कोय न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे, अपने लिवा पिलाए गुरमुख सुधा संभाली है। कह नानके विड़दाता सो क्यों मनु विसारी है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया गुण सब इको जेही करतै खेल रचाया, जात सुभाणा ता जमिया परवाल भला पाया। लिव छुटकी लगी तृष्णा, माया मरवरताया। ए माया जी तर विसरै मोह भजै पाओ दूजा लाया। कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिन विचे माया पाया। हराप मुल कै मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटहो। रहे लोक विलड़ाया, सर सतगुरु जी मिलै तिसनु सिर सौपिया। विचो आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहै, अर वसै मन आए। अरे आप मुल कह भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। रास मेरी मन बन जा रहा, रास मेरी मन बन जा रहा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जी हो, लाह खटे हो दिहाड़ी। यो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कह नानक रास मेरी मन हुआ बन जा रहा। हे रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै। जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पिए हर रस। बहुड़ न तृष्णा लग गया ए, यो हर रस करमी पाई है। सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे। जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरे आ। हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। अरे आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जग तिखाया। गुरु प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत न दरियाया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, आपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया, करण कारण जोगो। ये शरीरा मेरिया, इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक्यो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया।
ये नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह ज्योत तरी हर बिन वरण देखो कोई हर बिन वरण देखो कोई नदरी हर निहालिया यो भी संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जावे कारि कह हर बिना वरना कोई कह नानके नेत्र अंध से सतगुरु मिलया दिव दृष्ट होई ए सर्वन हो मेरे हो सचै सुनना नु पठाए सचै सुनना नु पठाए शरीर लाए सुनहो सतबाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समानी सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो सच है सुनै नो पठाए हर जीव गुपांदर रख कह वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट की दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनीक न दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाऊ नव निद तिस दांत न जाई पाया कह नानक हर प्यार है जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन वजाया इहो साचा सोहेला साचै कर गावो गावो ता सोहेला कर साचै जिथै सदा सच त्या वही सचो त्या वह जात पावे गुरमुख जिना बजावे इहो सत्सभना का खसम है जिस बख्शी सो जन पावे कह नानक सच सोहेला सचै कर गावे आनंद सुनो।

गुरु गुरी निवाज अंतर जामे सुपर जीव भाव जी दर दी हाजरी पर बेअंत गुरसिख माई पाई वालों भाव जी की बन दे सत्कार जो बेअंत माया बेटा वाले आप जन सर्व सिखी दान परोसा दान चलना प्यार उसमें खजाने पर पुरने सो आओ गुरु प्यारी साथ।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन केवट भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास।

मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ, सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला, रिद सिद्ध लागे पगयो है, जन कौ राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामी सो है, दुर्मत भागहीन मत फीके, नाम सुनते आवे मन रूहै, कौआ काग कौ अमृत रस पाइये, तृप्तै विष्टा खाए मुख गुहै, अमृत सर सतगुरु सतवादी, जित नातै कौआ हंसहु है, नानक धन धन वडे वडभागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है, गुजरी महला चौथा। हर जन ऊतम ऊतम बाणी, मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती,

लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाय। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभ हर

गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मुकौ देवो दान हर प्राण जीवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिरहो गुर सिख पगलाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मुकौ करो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावै ता गुरमुख मिले मिले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वडभागी गुर के सुख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग न पाया से भागहीन पापी जम खाया।

सुनावै रहाउ। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर स्यो चित लावै। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावै।

जन नानक गुरमुख बख्श मिलावै। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पूजरी महला चौथा, घर तीजा

हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहे जो आप कराय। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिबलाई। गुजरी महल्ला चौथा, चौपदे घर पहला। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करिया।

कर बिचारी, अठसठ मज्जन कर इस नाना, भ्रम आए धर सारी, अनिक सोच कर है दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी, धावत धावत सब

जमपुर ऊठ सिदास हुए अनन मन हठ की दृढ़ता आप सुकाओ जानात जो अनिंद निंद कर छुड्यो सोई फिर खात सहज सुपाई पै

हाके, हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद भयो मन निर्मल, सर्ब सुखा सुख पायो रहाओ। जो किछ कियो सोई भल मानै, ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समानी, जोग जुगत निसानी, पूरन पूर रहो श्रभथाई, आन कत हूं जाता, कट कट अंतर सर्व निरंतर, रंग रव्यो रंग राता, पहे कृपाल दयाल गोपाला, ता निरपै कै कर आया, कल कलेश मिटे खिन भीतर, नानक सहज सुमाया, गुजरी महला पंजवा, जिस मान

सागर तरिया। गुर हर बिन को न वृथा दुख काटै, प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है। तित मान महत जस काटै रहाओ।

करण है हार पुछाता, जिसका सातिन ही रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभु पुरख दयाला, कीमत कहण न जाई। गुजरी महला पंजवां, दुपदे घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए कर अपने, सगल करत नमस्कारू। वर्ण जात को पूछे नाही, बाछ है चरण रवारू। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारू, सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारू रहाओ, साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारू, नाम दे उत्तर लोचन कबीर दासरू। मुक्त भयो चमियारू, गुजरी महला पंजवां, है नाही।

इनकी हैरत कछ न रही। बलवंत व्याप रही सब मही और न जान सकू मरमा, गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना, सगल भवन लपटही, कहो नानक साध ते भागी, होए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवां।

सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जिस भेटे तू टह माया बंद, बिसर न कबहू जाई। रहा करत करत अनिक बहुपाती।

चित चितवो हर रसन आराधो निरखो तुमरी और रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करूं कर जूर, नाम जपै नानक दास तुमरो उदरस आखी फूर। गुजरी महल्ला पंजवा।

गूजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत।

विवेक करण कारण समर्थ श्री धर शरणता की गही मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर नित लही। गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ स

दुख सहज आनंद पावै, मिली निर्मलता उराव। साध संग उधार इहु मन, आठ पहर आराध। काम क्रोध अहंकार बिनसै, मिटै सगल उपाद। अटल अछेद अभेद स्वामी, शरणता की आऊ। चरण कमल आराध हृदय, एक स्यों लिव लाऊ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी,

है हर जन संत सर्व विद प्रमति पुकार है कत है नाही छूट हर चरण शरण अपार प्रभ के दिड़ गही नानक ऊट सर्व विद प्रमति।

जो समा हुक्म होया इस समय की समाप्ति है। सतगुरु सबना दिया हाजरिया दर प्रवान करन, एक जकारा वीरां नूं बेनती चढ़दी कला दा ते एक जकारा पैणा नूं करो कृपा सारे।

समूह प्रबंधक साहेबान धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है, डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हां दे उद्दम सदका, समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका आपां सारयां ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे नाल ही अरदास विच आपां गाणा। ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਨਿਸਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

भगत जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस घर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवारां दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है, भुल चुक दिखी मां, गुरु बख्शिश करे रहमत करे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

हे गुरु साहिब जी, सब किश आपे आप है, दूजा अवरना कोई, ज्यों बुलाए त्यों बोली है, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए, हर की वडियाई हो आख ना साका, हो मूर्ख मुग्ध नी चान, जन नानक को बख्श लै मेरे स्वामी।